बिल्कुल जी यो घंटा पात्र जमगा सासो ब्याज सासो नाखने इजाजत अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो जी जनाब तासु पिया ट्राई हो के सासो आवाज माता न रात जी लेट मी चेक

0: हाँ बिल्कुल जनाब, डेटिंग में जमा आवाज औरी सोचिम डेटिंग में जमा आवाज और यो दुनिया माना ना। थैंक यू सो मच। मुंगा सासु दमीनी सासु दो खुलूस कदर को डेटिंग में जमा आवाज बार यूरोप कंट्रीज की मोरी दिल की पे मारा तो की मोरी दिल की पे लिंक बांधे जमंगा लिसनर चिकम दे यकी औरी साहिब अली चिकम दे दबाचाई पे दुबई की अगजवन गई लिंक बांधे कम देगा प्रोग्राम और यो दुनिया मनाना वही जबरदस्त देर जियात मजा कही सासू दमीनी सासू खुलूस कदर कोमा साहिब अली अल्लाह रे सासू दमीनी सासू दा खुलूस मुखसरा हमेशा हमेशा द पारे लरी और सासू दे अल्लाह पखपल कली सवाबू की तासु देर ग्रान कार कवे तासु मुसाफरी कवे तासु पबल वतन माने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब सुख कम जन पखेर आले शेर दरे
1: नाओ
0: के ना जैसे प्यारा रे लगे गुल नबी दागा कम काका नजीब शाह लगा सो को एक बात खान ला रहा था रखते हुए वही यहाँ से दागा था बाबा भाई मुंग नू मान जरा से प्यारा ने सुख गिला उन्हें की करे मलगोर सर दे शिवि मलगिरी मेरे परमुलो और शिवि दरवाड़ी गुरु बशर दरबानी जाने के लोगों की सार शुमा गरी मुन मुन सर क्यों को प्यारा जू आओ बारा नावे डन तो चक्कर लगोम डेरो ड्यूटी को मनो नकली के नहीं मानो इंशाला चक्कर दर लगू मलगिरी सर दर्जू बखा खुशहाली कम दादराना खा मशरान नाजी गुल नबी शाह ला रहे नसीब शाह ला रहे एकमत खान ला रहे दा टूल चिकम दे मलंग शाह मलंग भाई दा टूल चिकम राजी दराना खा गोल मोहम्मद ला ला रहे दा टूल दराना खा गिरी हो पमंग मान दे और टूल जब कम कम मालूम जिलेस मास्टर डकते नो सासो खपल दरानी खा गिरी खबर चिकम दे खगी नो मामा ने खगी लगी पखल कुम खगी लगी जमा दरमाने में जका खगी लगी खा
1: बिल्कुल खबर जाने
0: जी जी कुर्बान जरूर मुलाकात पर सर कुम खा मशरान खो
1: खीखा
0: कबुल्ला खा
1: जी
0: जी
2: बिल्कुल
0: जनाब मातावेरी लेक्चर आर जे इमरान खान प्रोग्राम दास हो रहे दिजड़ खबरी पखल खबरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो हेलो सासु काल चिकम दे कट शो ब्याह मिलाओ के हाजी।

0: 304
1: और हंसी
0: 11
1: खुशी नहीं
0: 88 1 यूजली बयान तो पुख्तो के वेल वाला में 0 3 0 सलूर यो यो अतो अतो यूजली बयान अतो अतो और पसी यो पदे नंबर बाई था सो अमीन आगा तकाल और मिलो के द बेलडोना चारकोल ब्लीच जमुन कमरागली दी आग ब्लीच यगा यवाजी द विख्तो द पटोलो द बारा ना बल्कि द रंग द खुली कोल द बार द खपू द स्पिन वालो द बार द लासुन द स्पिन वालो द बार द मक द स्पिन वालो द बार बेलडोना चारकोल ब्लीच ने आग जिने की चग ब्लीच इस्तेमाल या अगी त द लगी च मात द ब्लीच जरूरत दे द बेलडोना चारकोल ब्लीच जाना द निज दे कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल स्टोर न जरूर वाली हो द सवाबी द खलक यूजली बयाम डेरे डेरे जात मन न कोमोज बलंड लंडा और बल्कि पो मंड मंड बानी जदन द शौकत दग दुकान द एड्रेस द शामिल हो मजग द बुनीर कम खलक द नई तदावेल वाला मची जुवल बाजारगी की द शौकत दुकान दे दागसर द बेलडोना प्रोडक्ट्स मिलावी गयो आग नतासु द बेलडोना द प्रोडक्ट्स बिल्कुल अगस्ते छी
2: अवेलेबल

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
4: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
3: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
5: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
3: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, सुन्नत भरी बातें और दिल को वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

0: 94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पो सवाबई क्यों हूँ
1: माँ वेले माले द शारजा न काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर शमा
1: ओ हो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वेरायटी मौजूद दा
2: नुद्दा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331 93 94 94 1 हैदर मुमन होम्योपैथिक

हासिल मुझे तू पहले भी नहीं था, खोया मैंने तुझे आज भी नहीं। तुझे सोच तुझे भूलने का सोचूं तो धड़कन एहतजाज करती है।

एक हासिले खुलूस बता क्या जवाब दूं मुझे तुम दिल पे लिख दुनिया ये पूछती है कि मैं क्यों उदास हूं।

0: तस्वीर
1: ये सब सहारे अपनी जगह मगर
0: ये हम ही
1: तेरी कमी दिल कह गई मेरी ये सब सहारे अपनी जगह मगर

सजा कोई भी दो मगर हमेशा साथ रहो। सजा कोई भी दो मगर हमेशा साथ रहो, तुम्हारे बिना जीने की आदत नहीं मुझे।

लोगों ने समझाया वक्त बदलता है और वक्त ने समझाए लोग बदलते हैं। मेरे मोहब्बत का एक ही उसूल है, वफादार है तो बदसूरत भी कबूल।

माना कि तुझसे दूरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, पर तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हा गुजारता हूं।

तुझे यकीन क्यों नहीं आता मेरी वफा पे, किस किस को नहीं छोड़ा तुझे पानी की खातिर। चेहरे बदल बदल कर मिलते हैं मुझसे लोग, इतना बुरा सुलूक मेरी सादगी के साथ। दर्द है या तेरी तलब, दर्द है या तेरी तलब, अरे जो भी है मुसलसल है।

भरोसा, दुआ, वफा, ख्वाब, मन, मोहब्बत। अरे कितने नामों में समेटे हो सिर्फ एक तुम। फिर से एक बार, भरोसा यही, दुआ, वफा,